0: இன்றைய நிகழ்ச்சியில் எப்போது எலும்பியல் மருத்துவரை அணுக வேண்டும் என்பது குறித்து விளக்கம் அளித்தார். புதுச்சேரி இந்திரா காந்தி அரசு பொது மருத்துவமனை மற்றும் பட்ட மேற்படிப்பு மையத்தின் எலும்பியல் துறை நிபுணர் டாக்டர் டி சிவராஜ் அவர்கள்.
1: தொடர்வது காமன்வெல்த் விளையாட்டுப் போட்டிகள் 2026 தினசரி முக்கிய நிகழ்வுகள். டெல்லி அஞ்சல்.
2: नमस्कार। ग्लासगो की ठंडी फिजाओं में भारतीय खिलाड़ियों का हौसला हर गुजरते दिन के साथ और बुलंद होता जा रहा है। राष्ट्रमंडल खेल 2026 के पांचवें दिन भारत के खाते में आए 6 पदक। ये पदक सिर्फ पदक नहीं बल्कि 4 साल की कड़ी मेहनत, पसीने और त्याग की कमाई है। हालांकि कई मुकाबलों में भारतीय खिलाड़ियों को जीत का स्वाद चखने को नहीं मिला, लेकिन उनके जज्बे में कहीं कोई कमी नहीं दिखी। 5 दिनों का ये सफर बता रहा है कि भारतीय दल अभी थमा नहीं है, बल्कि आने वाले दिनों में पदकों की चमक को बढ़ाने के इरादे से आगे बढ़ रहा है।
3: मजबूत टखने, पैरों में लोहे सी मांसपेशियां, कंधों पर बोझ संभाल लेने की अद्भुत ताकत और गजब का भुजबल, ये होती है पहचान वेटलिफ्टिंग की, जिसने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में इस देश को इन खेलों के पहले तक 46 स्वर्ण पदक सहित कुल 133 पदक दिलाए थे, और ये संख्या इन खेलों में भी बढ़ती ही जा रही है। और कल से ही आरंभ हो गई वो स्पर्धाएं जो किसी भी मल्टी डिसिप्लिनरी खेल उत्सव की सबसे रंगारंग, सबसे ग्लैमरस और सबसे रोमांचक स्पर्धाएं होती हैं। एथलेटिक्स खेलों की रानी कहते हैं इसे, और जिस तरह से भारत एथलेटिक्स की दुनिया में अपनी पहचान बना रहा है, उम्मीदें भी जवान होती ही जा रही हैं। कल किन भारतीय पंखों को परवाज मिली, कौन बिजली की तरह कौंधे, कौन उम्मीदों के बोझ में दब गए, कहां मायूसी मिली और कहां अपना श्रेष्ठ प्रदर्शन करने का संतोष भले ही पदक में न बदला हो। तो आइए शुरुआत करते हैं पांचवें दिन का पूरा लेखा जोखा।
2: कॉमनवेल्थ खेलों का पांचवा दिन भी भारतीय महिला वेटलिफ्टर्स के नाम रहा, जहां ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं को 53 किलोग्राम भार वर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए कुल 199 किलोग्राम भार उठाकर रजत पदक दिलवाया। ज्ञानेश्वरी यादव ने 88 किलोग्राम स्नैच और 111 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क वजन उठाकर रजत पदक अपने नाम किया। ज्ञानेश्वरी का मुकाबला नाइजीरिया की दिग्गज खिलाड़ी ओनेमो ओमुलोला डिडेही के साथ था, जिन्होंने 206 किलोग्राम का कुल वजन उठाकर रिकॉर्ड स्वर्ण पदक अपने नाम किया। 22 वर्षीय ज्ञानेश्वरी ने शारीरिक दर्द से जूझते हुए ये ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। उन्होंने अपने अंतिम और तीसरे प्रयास में 111 किलोग्राम वजन उठाकर पोडियम पर दूसरा स्थान पक्का किया।
4: मुझे बहुत ज्यादा खुशी हो रही है, ये मेरा पहला कॉमनवेल्थ गेम्स है और मेरा मोटिव यही था कि मैं अपना पर्सनल बेस्ट करूं। मैंने ट्राई किया था कि मैं गोल्ड लेके आऊं इंडिया के लिए, पर आगे कॉम्पिटिटर भी बहुत ज्यादा टफ था, पर मैंने अपना पर्सनल बेस्ट करके सिल्वर मेडल लिया, मैं इसमें बहुत खुश हूँ।
2: उनकी इस जीत पर छत्तीसगढ़ वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के सेक्रेटरी जनरल राजेश झंगिया जी ने आकाशवाणी से बात करते हुए कहा,
5: बहुत गरीब परिवार से बिलोंग करती है ज्ञानेश्वरी यादव, जो उनके पापा जो हैं दीपक यादव जी एक प्राइवेट इलेक्ट्रिशियन है, हमारे आदरणीय सर थे, उन्होंने कुछ अपना फाइनेंशियली उनको सपोर्ट करते करते उनको उसी योगदान देते हुए इस मुकाम पे पहुंचाया। पहले छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधित्व के, फिर नेशनल में, आज वो इंटरनेशनल लेवल पे अगर वो पार्टिसिपेट, उसका पूरा श्रेय वहाँ के लोगों का और हमारे बड़ों का आशीर्वाद से वो आज इस रिजल्ट पहुँचाई है सर।
2: वेट लिफ्टिंग में पदकों का सिलसिला यही नहीं रुका। ज्ञानेश्वरी यादव के बाद बारी आई बिंदिया रानी देवी की, जिन्होंने महिलाओं के 58 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया। बिंदिया रानी ने कुल 199 किलो वजन उठाकर भारत को इन खेलों का 6ठा पदक दिलवाया। बिंदिया ने स्नैच में 87 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 112 किलोग्राम वजन उठाकर ये पदक पक्का कर लिया। इस स्पर्धा में नाइजीरिया की राफियातू ने गोल्ड मेडल अपने नाम किया। मणिपुर की रहने वाली बिंदिया रानी ने कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा पदक जीता है। हालांकि पिछले खेलों की तुलना में इस बार उन्होंने 55 किलोग्राम से बढ़कर 58 किलोग्राम वर्ग में चुनौती पेश की थी, जो कि शारीरिक और तकनीकी रूप से एक बड़ा बदलाव था। देर रात हुए मेंस 79 केजी में भारत के वल्लूरी अजय बाबू ने केवल वजन ही नहीं उठाया, बल्कि पूरे भारतवासियों की आशाओं और जिम्मेदारियों का भार भी अपने कंधों पर संभाल कर रखा। वल्लूरी अजय बाबू ने स्नैच में 149 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 181 किलोग्राम वजन उठाकर कुल 330 केजी वजन के साथ पोडियम पर दूसरा स्थान हासिल किया। अजय बाबू ने गोल्ड मेडल से सिर्फ 1 किलोग्राम वजन से चूक जाने के बावजूद स्नैच में 149 किलोग्राम का गेम्स रिकॉर्ड बनाकर सिल्वर मेडल हासिल किया।

0: स्पर्धाओं की रानी क्वीन ऑफ ऑल स्पोर्ट्स एथलेटिक्स की शुरुआत कल हो गई। भारतीय दल में सबसे ज्यादा ट्रैक और फील्ड के एथलीट ही हैं, 22 पुरुष और 10 महिलाएं, कुल मिलाकर 32 एथलीट। विश्व प्रसिद्ध और भारत की आंख के तारे स्टार जेवलिन थ्रोअर नीरज चोपड़ा, उनके साथी रोहित यादव, तेजेंद्र पाल सिंह तूर, तेजस्विन शंकर, मुरली श्री शंकर, सर्वेश कुसारे जैसे सितारों से सजा हुआ दल। कल पहला दिन था और बहुत ही शानदार शुरुआत हुई, क्योंकि भारोत्तोलन के सिवा अगर कोई और पदक आया वो आया एथलेटिक्स में। सर्वेश कुसरे ने ऊंची कूद में रजत पदक कमाया। वो तो बस थोड़ा सा किस्मत उनकी खराब थी या किस्मत का फेर था कि वे स्वर्ण पदक नहीं पा सके तकनीकी कारण की वजह से, क्योंकि उन्होंने अधिक अटेम्प्ट लिए थे उस ऊंचाई को पार करने में। बहुत कमाल की ऊंची कूद फांदी कल उन्होंने। पुरुषों की ऊंची कूद में भारत के तीन तीन एथलीट थे, आदर्श राम ज्योति शंकर, सर्वेश कुसरे जिन्होंने इस साल बहुत अच्छा प्रदर्शन किया है, 2.30 मीटर तक पार किया है, दुनिया में नंबर 4 के स्थान पर पहुंच चुके हैं, और तीसरे भारतीय थे तेजस्विन शंकर, मशहूर डेकाथलीट और हाई जंपर। लेकिन तेजस्विन फील्ड में नहीं उतरे, रिटायर हो गए क्योंकि उनको चोट लग गई थी। आदर्श और सर्वेश दोनों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी शुरुआत की और 2.1 मीटर की ऊंचाई तक दोनों ही लोग पदक की होड़ में बने हुए थे और पहले 5 स्थानों में थे। सर्वेश तो आगे बढ़ते चले गए और पहुंच गए टॉप 3 के मुकाबले में, और उसमें भी जब किमानी जैक बाहर हो गए इंग्लैंड के, तो वो 2.25 मीटर की जब ऊंचाई पर बार सेट किया गया तो उन्होंने उसको भी तीसरे प्रयास में पार कर लिया। इसके बाद 2.28 सर्वेश और जमैका के रोमेश बेकफोर्ड दोनों ही पार नहीं कर पाए, यानी 2.25 मीटर पर बराबर रहे। लेकिन चूंकि अधिक प्रयास लगाने पड़े थे सर्वेश को, अपने तीसरे प्रयास में उन्होंने पार किया था, इसके चलते उनको मिला रजत पदक और स्वर्ण पदक गया जमैका के पास। जब दिन की शुरुआत हुई तो जो पहली स्पर्धा थी वही किसी झटके से कम नहीं थे। भारत के गुरिंदर वीर सिंह 100 मीटर की हीट्स में उतरे। 100 मीटर सबसे आकर्षक स्पर्धा होती है जो खेलों के सबसे तेज धावक का निर्णय करती है। एथलीट्स का हुजूम था, 11 हीट्स, 88 प्रतियोगी। हीट नंबर 4 में गुरिंदर, और गुरिंदर भारत के सबसे तेज धावक हैं इस समय। अपनी हीट में गुरिंदर जमैका के रोहन वॉटसन के पीछे रहे, दूसरे स्थान पर आए, लेकिन जब पूरा देखा गया मिलाकर तो वो आए 20वें स्थान पर, जबकि क्वालिफाई किया 17 लोगों ने। फिर आया समय मुरली श्री शंकर का, जो निसंदेह देश के सबसे अच्छे लॉन्ग जंपर है। उन्होंने उम्मीदें जवान रखी इस देश के खेल प्रेमियों की। अपने पहले प्रयास में ही क्वालिफिकेशन मार्क 8 मीटर पार कर लिया, 8.01 मीटर की दूरी फलांग कर। मुरली अब पदक की दूरी लांघने के लिए उतरेंगे कल रात, और भारत के लिए बहुत बड़ी उम्मीद होंगे।
1: Hopefully I have to redeem my silver medals from last Commonwealth Games recently.
0: लॉन्ग जंप में ही भारत के एक और एथलीट थे लोकेश सत्यनाथन, वो बहुत रंग में नहीं दिखे इस सीजन में। अपना सर्वश्रेष्ठ 8.21 मीटर निकालने वाले लोकेश 7.77 मीटर ही कूद सके।
2: I finished fourth in my group and it was a big, two big jumps in the last and it was a scratch. But you know, bigger things is coming on Wednesday, so stay tuned.
0: पुरुषों की 110 मीटर हर्डल्स के सुबह हुए राउंड 1 के मुकाबले में हीट 1 में तेजस अशोक शिरसे ने क्वालिफाई तो कर लिया था, लेकिन देर रात हुए फाइनल मुकाबले में वो सबसे पीछे स्थान पर आ पाए।
3: एथलेटिक्स के बाद बात करते हैं पैरा एथलेटिक्स की, जहां कल का दिन रहा भारतीय महिला खिलाड़ियों के नाम। एक ही गेम, एक ही कैटेगरी, और वो पल जिसमें 2 स्थान आए भारतीय महिलाओं के नाम। जी हां, भारत की पैरा एथलीट शर्मिला धनकर ने राष्ट्रमंडल खेल 2026 में महिलाओं की शॉटपुट F57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर भारत को इस संस्करण का दूसरा गोल्ड मेडल दिलवा दिया। वहीं इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा ने 7.26 मीटर के व्यक्तिगत सर्वश्रेष्ठ पर्सनल बेस्ट थ्रो के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया। पैरा एथलेटिक्स में ही आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत के राकेश भाई भट्ट ने पुरुषों की 100 मीटर T38 फाइनल स्पर्धा में 11.82 सेकंड का समय निकालते हुए 5वां स्थान हासिल किया। वहीं श्रेयांश त्रिवेदी ने 12.22 सेकंड के समय के साथ 6ठे स्थान पर अपनी दौड़ समाप्त की।
0: इस बार भी मुक्केबाजों ने उम्मीदों को भरपूर हवा दे रखी है। अब तक जितने भी बॉक्सर जितनी बार रिंग में उतरे हैं, दो बार के सिवाय रेफरी ने हर बार उनका हाथ ऊंचा ही उठाया है। लेकिन एक बार जब ऊंचा नहीं उठा वो कल भी था। कल चार भार

0: वर्गों में राउंड ऑफ 16 के मुकाबले थे और तीन भारतीय मुक्केबाज अपने मुकाबले जीतकर पदक पक्का करने से बस एक बाउट दूर ही रह गए हैं। सबसे पहले रेड कॉर्नर में सचिन सिवाच ने तीसरे राउंड में बेहतरीन मुक्केबाजी कर अंकों के आधार पर 4-1 से इंग्लैंड के विलियम हेविट को परास्त किया।
1: तैयारी बहुत अच्छी चल रही है, बहुत बढ़िया। अपने अपोनेंट्स के सारी उनकी वीडियो देख रहे हैं, गलतियों पे काम कर रहे हैं और बहुत अच्छी तैयारी चली हुई है। गोल्ड लिया ने
0: और इसके बाद 80 किलोग्राम भार वर्ग के मुकाबले में अंकुश ने जबरदस्त पंचेस और जैब्स के साथ साथ बेहतरीन रक्षण करते हुए 5-0 के एक मत से फाइट अपने पक्ष में कर ली।
2: यूनानिमस डिसीजन, द विनर इन द रेड कॉर्नर फ्रॉम इंडिया।
0: दिन की एकमात्र भारतीय महिला मुक्केबाज साक्षी भला क्यों पीछे रहती महिलाओं के 51 किलोग्राम भार वर्ग में। पूरी चपलता के साथ रिंग को कवर करते हुए मुक्कों की बौछार कर दी उन्होंने और बोत्सवाना की लियाबो मुडुकांडे को उनको बिल्कुल बेबस कर दिया। 5-0 से सर्वसम्मति के साथ निर्णय उनके पक्ष में रहा और साक्षी अब पदक की साक्षी बनने के बहुत नजदीक पहुंच गई हैं।
3: मेरा काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है और मैं उम्मीद करती हूं कि कॉमनवेल्थ गेम्स में भी इंडिया के लिए गोल्ड मेडल जीत।
0: दिन की अंतिम बाउट थी 70 किलोग्राम भार वर्ग में सुमित की नॉर्दर्न आयरलैंड के जॉन मैकेलेन के साथ और सुमित ये मुकाबला अंकों के आधार पर हार बैठे।
4: चलिए अब आपको लिए चलते हैं फुर्ती और फ्लेक्सिबिलिटी के खेल जिम्नास्टिक में, जहां आर्टिस्टिक जिम्नास्टिक में महिला वर्ल्ड फाइनल में प्रतिष्ठा सामंता 7वें स्थान पर रही।
0: तैराकी में राष्ट्रमंडल खेलों में स्पर्धा खासी तगड़ी होती है। ऑस्ट्रेलिया तो हावी रहता ही है, लेकिन कनाडा, इंग्लैंड आदि भी बहुत कड़ी चुनौती पेश करते हैं। भारत के पुराने सीजनड पुरोधा साजन प्रकाश कल तरणताल में उतरे। 200 मीटर बटरफ्लाई में उन्होंने क्वालिफाई किया और तीनों हीट्स में कुल मिलाकर वे 6वें स्थान पर रहे और फाइनल में प्रवेश किया। फाइनल बहुत देर रात 2 बजे हुआ। वहां पर साजन प्रकाश अपनी ख्याति के अनुरूप प्रदर्शन करने में असफल रहे और पदक की होड़ से बाहर हो गए।
4: आइए अब जानें पैरा स्विमिंग में भारत का हाल। देर रात हुए फाइनल में स्वातिक पाटिल ने 5वां स्थान हासिल किया। स्वातिक ने फाइनल में 1:15.82 का समय निकाला। इस कैटेगरी में स्वर्ण ऑस्ट्रेलिया, रजत न्यूजीलैंड और ब्रॉन्ज भी ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी की झोली में गया। कर्नाटक के रहने वाले स्वातिक ने इस बड़े मंच पर भारत का प्रतिनिधित्व करते हुए बेहद कड़ा मुकाबला पेश किया। हालांकि वो पदक तालिका में स्थान बनाने से चूक गए, लेकिन 5वें स्थान पर फिनिश उनके खेल के कौशल को दर्शा गया।
5: Involves India's Putul Sonowal's Commonwealth Games 2026 campaign comes to an end after a loss against Kenya's Anwar Hamada. Despite a determined effort, Putul went down 0.5-1.5. He trailed 6-8 in his first set and in second set, he regained his composure and bounced back with good throws and leveled second set 5-5. But it was not too little and too late, and he missed out on a place in the semi-finals. The Indian bowler finished with 2 wins and 3 losses, defeating Canada and Falkland Islands while losing to Malaysia, Malta and Kenya during his campaign. He finished 5th in his section and could not qualify for the semi-finals.
4: अब बात आती है 3x3 व्हील चेयर बास्केटबॉल की, जहां भारतीय महिला टीम रीना, लक्ष्मी, मीनाक्षी, रितु पूल बी के तीसरे मैच में नाइजीरिया से 6-7 से हार कर बाहर हो गई।
0: और आइए अब एक संक्षिप्त निगाह डालते हैं आज होने वाली स्पर्धाओं में। वेटलिफ्टिंग, जिसमें अब तक बहुत पदक आए हैं, उसमें 63 किलोग्राम भार वर्ग में निरुपमा सिराम और 69 किलोग्राम में हरजिंदर कौर अपने बाजुओं का दम आजमाएंगी। एथलेटिक्स में 400 मीटर की स्पर्धा है पुरुषों की, महिलाओं में ऊंची कूद में पूजा होंगी, 10,000 मीटर में कुलवीर सिंह होंगे। बॉक्सिंग में 54 किलोग्राम भार वर्ग में प्रीति, 60 किलो में प्रिया, 65 किलोग्राम में परवीन और पुरुषों में जादूमणि सिंह, 90 किलोग्राम भार वर्ग में कपिल पोखरिया, ये सब आजमाएंगे अपने मुक्कों की ताकत।
4: राष्ट्रमंडल खेलों की इस अपडेट के साथ हम फिर हाजिर होंगे इसी समय पर। तब तक के लिए संपादक स्वाति कपूर, प्रस्तुतकर्ता शहनवाज खान के साथ मैं कविता शर्मा अपने सहयोगी अनुपम पाठक के साथ लेती हूँ आपसे विदा। नमस्कार।
0: The Commonwealth Games.

0: मोदी हर परिवार को घर में बिजली बनाकर वही बिजली बेचकर कमाई का एक और साधन देना चाहता है।
1: பிரதமர்

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4555 पर कॉल करें।
1: 100 வருட தங்க சாம்ராஜ்யம் சிவவள்ளி விலாஸ் ஜுவல்லர்ஸ் இப்பொழுது மக்களின் பேராதரவுடன் நேரு வீதியில் ஜொலிக்கிறது.

0: आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत लगभग 60 करोड़ लोग बने हैं 5 लाख रुपए के मुफ्त उपचार के हकदार। अब तक 12 करोड़ से भी ज्यादा मुफ्त उपचार किए जा चुके हैं, जिससे गरीब परिवारों के चिकित्सा खर्च में लगभग 2 लाख करोड़ रुपए की बचत हुई। आज ही आयुष्मान ऐप डाउनलोड कर आयुष्मान कार्ड बनाएं। ज्यादा जानकारी के लिए 1-4-5-5-5 पर कॉल करें।
1: நேர்களே, இதை குறித்து உங்களுக்கு ஏதாவது சந்தேகங்கள் இருந்தால் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் 2271760 மற்றும் 2275230 என்ற எண்ணு இருக்குது.